कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

तो संसार विकल्प की बात कर रहा है, ये तो परिश्रम परों के विकल्प में उलझ रहे हैं। मेरे पास अभी एक पर्ची आई है जिसकी चर्चा मैं आज नहीं करूंगा, करूंगा मैं 6 तारीख को, कि परिश्रमपुर की स्थापना करेंगे तो फिर गणपति का क्या करेंगे। उत्तर में 6 तारीख को दूंगा कि आज तो श्री कृष्ण से मुलाकात करनी है, जन्माष्टमी आज, और भी कई सवाल आए हुए हैं कि शैलो ब्रीदिंग क्यों होती है। शैलो ब्रीदिंग का सबसे पहला कारण है माँ बाप। जब जब तुमने बच्चों को बचपन में डराया या मुझे माँ बाप ने डराया, जैसे हम डरते हैं शैलो ब्रीदिंग शुरू हो गई है। मुझे वो विषय अभी लंबा लेना नहीं है, लेकिन मैं इन दिनों में देख रहा हूं जो अरम बेबी मेरे पास आते हैं, जो कभी 3 दिन के होते, कहीं 4 दिन के, कहीं 5 दिन के, कहीं 1 महीने के, कई बार 3 दिन के अरम बेबी की भी शैलो ब्रीदिंग चल रही है। मैं मेरी ओर से प्रयास करता हूं कि जो उनके अंदर मां के द्वारा गया हुआ ऑब्स्टिकल है वो निकल जाए, और कई बार वो ऑब्स्टिकल निकलते समय बच्चे रोते भी हैं, और उसका रीजन वहां को नहीं बोलता हूं, यहां बोल रहा हूं। उन माताओं के बच्चे अरम बेबी शैलो ब्रीदिंग करती है जो माताएं अंडर टेंशन 9 महीने रही है, तो शैलो ब्रीदिंग का पहला जो सूत्र शुरू हुआ वो डराने से। शैलो ब्रीदिंग का दूसरा कारण बना ठुसठुस के खिलाने का, और उसके दृश्य आपको भी पता है, वो दादी की, वो माँ की, वो चाची की, कोई भी हो, बच्चा खाना नहीं चाहता, उसके पीछे वो डिश लेकर के लगी रहती है, ये खा वो खा, इतनो खा उतनो खा। और तीसरा इस समय जो कारण चल रहा है पिछले 10-15 सालों से, वो मेडिकल साइंस का है। पता नहीं किस आधार पर डॉक्टरों ने कहना शुरू किया कि बेबी को हर 2 घंटे में फीडिंग कराना कंपलसरी है, और तुम्हारे ध्यान में ही नहीं आया कि 2 घंटे में, 2-2 घंटे में फीडिंग कराओगे तो तुम बच्चों को डायबिटीज का ही वरदान दोगे और कुछ नहीं दोगे। और उसके परिणाम में देख रहा हूं 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चों को डायबिटीज है। डॉक्टर लोग आपके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, मेरा कोई डॉक्टर रूपा, मेरा कोई, मैं कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं हूं मेडिकल साइंस का, लेकिन एक कॉमन सेंस है कि तवा तपने के बाद फलका उस पर डालोगे तो सिक जाएगा, और बिना तवा तपे फलका डालोगे तो चिपक जाएगा। अब अंदर में भूख लगी ही नहीं है, तवा तपा ही नहीं है, और आप 2-2 घंटे में उसको फीडिंग करा रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, क्या पेनक्रियास काम करेगी, क्या इंसुलिन प्रॉपर बनेगा, क्या डाइजेशन प्रॉपर होगा? ये तुम्हारे ओबेसिटी और डायबिटीज के लक्षण है। तो शैलो ब्रीदिंग के
ये सारा मेरा सब्जेक्ट पेरेंटिंग का है। मैंने पेरेंटिंग का, मैंने कल जैसे कल कहा कि मैंने पोल्यूशन के बाद सारे शिविर लेने हैं, मेरा मेरा टाइम टेबल बना करके लूंगा मैं। जैसे भी तुम हो उसमें तुम्हारा योगदान केवल 1/3% है। कितना है? 33%। 66 से 67% जो तुम्हारे लाइफ में है वो तुम्हारे माँ बाप का है। ये ठानांग सूत्र की बात कर रहा हूं मैं, मेडिकल साइंस तो कहेगा आपको लेकिन ठानांग सूत्र ये कहता है। और वे चैलेंज है कि उस 33% को इतना स्ट्रांग किया जाए कि 66% जो है वो कमजोर हो जाए। वही चैलेंज मेरे सामने है और उसी पर मैं काम कर रहा हूं। डिस्कवरी और सेल्फ में, अष्टमंगल में, पुरुषाकार में, कर्मा में, इस पर काम कर रहा हूं कि वो अब जो आ गया उसको तो मैं कुछ कर नहीं कर सकता है। लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है 33%, उसको कैसे और ताकतवर बना सकता हूं? इतना ही कर सकते हैं। मैं बस 2 सेंटेंस बोल करके रुक रहा हूं। जो आप बार बार देखते हो मुझे और गुरुदेव का स्मरण आते ही मेरा सब कुछ हिल जाता है, उसका कारण है या तो मेरे गुरुदेव जैसा कोई समर्थ गुरु आपको मिल जाए, और जो 66% को डिलीट कर दे और पूरा अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे। आप नहीं महसूस करते हैं कि आपको लगता है कि क्या होता है प्रवीण ऋषि को, लेकिन मैं जानता हूं मेरे तन को उन्होंने कैसे चेंज किया है। ऐसा समर्थ गुरु वापस अनिश्चित ये या तो मां बाप सुधरे या आप सुधरे, दूसरा कोई पाने। शानुभूति का ही उत्तर था। आइए बाकी सवाल और भी हैं, उन सवालों का जवाब यथा समय देखूंगा। गणपति का उत्तर मैं पक्का दूंगा, अच्छी तरह से दूंगा, 3 भाषा में दूंगा। पहली भाषा रहेगी श्रद्धा की, दूसरी भाषा रहेगी लॉजिक की, और तीसरी भाषा रहेगी हंटर की। तीनों ही भाषा में उत्तर दूंगा। और वो उत्तर रहेगा आपके लिए रविवार के दिन। जिन जिन को भी आपको लाना है रविवार को लाना है, और उस रविवार के उत्तर मिलने के बाद भी यदि कोई तैयार नहीं हुआ तो मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा। रविवार के उत्तर सुन लेना एक बार। आपको करना है परिश्रम पर की आराधना तब भी सुन लेना, नहीं करनी हो तब भी सुन लेना। और बिल्कुल डिक्लेयर करके कह रहा हूं मैं उस दिन 3 भाषा में बोलूंगा। श्रद्धा की भाषा में, लॉजिक की भाषा में और हंटर की भाषा में। ओके, चले श्री कृष्ण की तरफ।

यदि किसी के मन में मेरी हंटर की भाषा को लेकर के क्वेश्चन आया है, दिमाग में आ चुका है, क्या संत हंटर की भाषा में प्रयोग कर सकता है क्या, तो मैं बता दूं आपको, उत्तराध्ययन सूत्र में गया है, खड्डू या में चेवेड़ा में अकोसा या वहाय में, उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्याय में गया है कि गुरु मुझे डांटते हैं, गुरु मुझे थप्पड़ मारते हैं, गुरुदेव मेरे पर आक्रोश करते हैं, इसलिए तुम्हारे मन में आता है तो तुम पूछ लिया करो, मन में मत रखा करो, बाहर जाने चर्चा मत करा करो। मैंने जैसे बोला ना हंटर की भाषा, वो अंदर में शुरू हो गया कही मारा सब हंटर की भाषा कल्प की मारा सामने, मारो कल्प अकल्प मारा गुरुदेव देखने बैठा है, थाने देखने की जरूरत को नहीं है।

परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन। मंच पर विराजमान श्रद्धा के केंद्र प्रवर्तक से कुंदन श्री साहब के चरणों में हम सभी की वंदनाएं। स्नेही संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, जन्माष्टमी है और श्री कृष्ण की मुलाकात के लिए आपको आमंत्रण है। कौन श्री कृष्ण है, किसको कहते हैं श्री कृष्ण है? कृष्ण और श्री दो शब्द है, श्री और कृष्ण। और कृष्ण का मीनिंग आपको पता ही है कि ब्लैक, आपकी भाषा में निगेटिव। जो निगेटिव को भी अपना ऐश्वर्य बना ले, श्री यानी ऐश्वर्य। जो आपत्ति को भी संपत्ति में चेंज कर दे, जो संकट में भी सौभाग्य के अवसर निर्माण कर ले, धुआंधार बारिश के बीच भी जमुना में से जिसको रास्ता मिल जाए। और कंस के सारे बंधनों के बीच भी जिसको मुक्ति का मार्ग मिल जाए। जिसके जन्मने के पहले ही जिसके मरने की व्यवस्था की गई थी, और जिसको जन्मने के लिए जेल की कोठरी में जन्म लेना पड़ा है, और जिसका हत्यारा हो उसका मामा ही बनने के लिए तड़प रहा था, और उसके बावजूद जिसका बाल बाका ना हो सके वो श्री कृष्ण। कि जिसने इस प्रकार की ऊर्जा के साथ पिछले जन्म में साधना करी, ऐसा ऊर्जा का स्रोत लेकर के आया, ऐसा शक्ति का स्रोत लेकर के आया, किसी से लिया नहीं, तैयार किया, वो श्री कृष्ण है। जो रणछोड़ दास भी बन जाए तो भी जयकारा जिसका लगता है, जिसकी युद्ध नीति के सामने जरासंध भी कंस भी सारी पुतना से लेकर तो मानुर तक, जिसके युद्ध नीति के सामने परास्त हो गए, जो अपने संगी साथियों में ऐसा विश्वास निर्माण करे कि तुम ही भगवान हो, अपने संगी साथियों में कि तुम ही तारणहार हो, ये विश्वास जो निर्माण करे वो श्री कृष्ण है। सुदर्शन चक्र होने के बावजूद, सुदर्शन चक्र होने के बावजूद जो शशिपाल की 99 गालियां मुस्कुराते हुए सुन ले, पहले गाली पर ही सिर काट सकता था, लेकिन फिर भी जो 99 गालियां मुस्कुराते हुए सुन ले वो श्री कृष्ण है। समृद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद भी
राजा के सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने के बाद भी जो सुदामा ने लाए हुए पोहे हलवे जैसे प्यार से खा सके, वो श्री कृष्ण है। जो ये घोषणा कर देता है कि युद्ध लड़ूंगा नहीं, शस्त्र हाथ में लूंगा नहीं, युद्ध लड़ूंगा नहीं, शस्त्र हाथ में लूंगा नहीं, और पूरी सेना एक ओर है और मैं एक ओर हूं, फिर भी जिसकी कीमत अर्जुन को सेना से शस्त्र से भी अधिक लगे वो श्री कृष्ण है। ऑप्शन था श्री कृष्ण को चुनना कि सेना को चुनना, ऑप्शन था। तुम्हारे सामने तो सिंपल ऑप्शन आया, परुषण परों को चुनना, शाश्वत पर्व को चुनना, धर्म की स्थापना होने के पहले से जो त्योहार चल रहा है, तीर्थंकर बाद में हुए है, पहले पर्युषण पर्व शुरू हुआ है, संवत्सरी पहले शुरू हुई है, जो इंसानियत का पर्व है, किसी देवता का नहीं, किसी देवी का नहीं, किसी भगवान का नहीं है, इंसानियत का पर्व, मैत्री का पर्व, क्षमापना का पर्व, सहयोग का पर्व, समर्पण का पर्व। उस पर्व को चुनना कि आक्रमण का पर्व चुनना, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है। मैं तो ये ध्येय लेकर के चला हूं कि दुनिया से सारे आक्रमण के पर्व छीन लूंगा और दुनिया को केवल समर्पण का पर्व दूंगा। जिस दिन इंसान ने लड़ना बंद करने का निर्णय लिया बिना गुरु के, बिना समझाए, जिस दिन इंसान समझा वो दिन है संवत्सरी। शाश्वत हैप्पी न्यू ईयर है संवत्सरी। संवत्सरी शब्द का मीनिंग समझते हो क्या? संवत्सर यानी साल, संवत्सरी यानी नया, नए साल का पहला दिन। ये शाश्वत हैप्पी न्यू ईयर है, ये कैलेंडर का नहीं है, ये किसी की विजय यात्रा का नहीं है, ये किसी के जन्म का नहीं है, ये इंसानियत के जन्म का त्योहार है। तुम्हारे सामने दो ऑप्शन आई तो तुमने श्री कृष्ण जैसे परुषण पर्व को छोड़ने का मन बना लिया। उस अर्जुन की तरफ देखो, दुर्योधन श्री कृष्ण का वैल्यूएशन कभी नहीं कर सका और अर्जुन को कभी सेना का मूल्य रहा ही नहीं। अर्जुन को कभी बाहर की समृद्धि का मूल्य रहा ही नहीं, उसको तो बस श्री कृष्ण मिल गए, दुनिया मिल गई। अरे जिस परुषण पर्व का इतिहास दशान भद्र की भूमि पर मंदसौर में घटित हुआ है, उदयन राजा चंड प्रद्योत को जिसको जेल में कैदी बना करके ले जा, वीडियो से बांध करके ले जा रहा था, गुनेगार था, जिस दिन उसने अपने दुश्मन को समझा कि मेरा भाई है और गले मिलाया, वो संवत्सरी है।
तुम चाहते तो हो कि तुम्हारे जीवन में दुश्मन नहीं रहे, लेकिन त्योहार तुम वो मनाते हो जो दुश्मन को ताकत देते हैं। पुरुषन पर वो त्योहार है जो दोस्ती को ताकत देता है। श्री कृष्ण को चुना अर्जुन ने, और अर्जुन के विश्वास को जिसने टूटने नहीं दिया वो श्री कृष्ण। सारी दुनिया ने अर्जुन को पागल कहा था कि सेना छोड़कर किसी निहत्ते को लेकर के आया है। लेकिन जिसने अर्जुन के आस्था को विश्वास को टूटने दिया वो श्री कृष्ण। अरिष्टनी में प्रभु घोषणा करते हैं कि द्वारिका का विनाश होगा। और जो केवल घोषणा को सुनकर के डरता नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होता है, तो प्रभु से पूछता है कि प्रभु किस कारण से विनाश होगा। और जो विनाश के कारण को जान करके विनाश के कारणों को दूर करने के लिए स्वयं को समर्पित करता है, वो अरिष्ट नियम से प्रार्थना नहीं करता है कि आप तीर्थन करो, मेरी द्वारिका को बचाओ। जैसे अरिष्ट नियम ने कहा कि द्वारिका का विनाश होगा, और द्वैपायन ऋषि शराब और अग्नि के कारण से द्वारिका का विनाश होगा, तो वो श्री कृष्ण है कि जो पूरे द्वारिका से शराब निकाल देता है, रीजन समाप्त करता है कि न शराब रहेगी न द्वारिका का विनाश होगा। लेकिन नादानों को कौन समझाए। द्वैपायन ऋषि तो जंगल में दूर चले गए कि मैं द्वारिका का विनाश का कारण न बनूं। जैसे प्रभु से मुंह के सुना कि मैं द्वारिका के विनाश का कारण बनूंगा। इतने सुंदर साम्राज्य के, इतने सुंदर नगरी के विनाश का कारण मुझे नहीं बनना है। इस तड़प के साथ, इस प्रेरणा के साथ जो जंगल निकल जाता है, इतना सा तो संकल्प ले ही सकते कि मैं किसी के विनाश का कारण नहीं बनूंगा। और वही यादव कुमार मस्ती में बेहोश होकर के नशे में पहुंचते, उसको उचकाते, वो अपने आप को कंट्रोल करता है, रिस्ट्रेन करता है। लेकिन जो नशे में मदहोश हो जाते हैं उन्हें कभी भी संत की साधना नहीं दिखती है, तपस्वी का तप नहीं दिखता, योगी का योग नहीं दिखता है। किसी संत का संतत्व पहचानने के लिए भी अंदर में है ये पागलपन नहीं होगा तो संत नजर आएगा। उन यादव कुमारों को नशे में थे और द्वैपायन ऋषि को उचका के रहे, और तब द्वैपायन ऋषि फिर नियाना करता है, सॉरी श्री कृष्ण किसको कहते हैं, तब द्वैपायन ऋषि संकल्प लेता है कि बस बस मैं तो अब इस द्वारिका का विनाश करके रहूंगा। क्या परिस्थितियां, क्या मजबूरियां, जिसने इसलिए जंगल की यात्रा सुनी थी कि मैं द्वारिका का विनाश का कारण न बनूं। इतने उदात्त संकल्प के साथ चले हुए ऋषि को भी परिस्थितियां मजबूर कर देती है कि स्वयं की घोषणा कर दे कि मैं ही विनाश करूंगा।
संभल के रहना। किसी योगी को मजबूर मत बनाना, मजबूत बनाना। किसी संत को मजबूत बनाओगे तो वरदान मिलेंगे, और किसी संत को मजबूर बनाओगे तो दैत्यपन ऋषि मिलेगा। वो नहीं चाहता था लेकिन मजबूर किया उसको, और तब नशा उतरा है। नशा कब उतरता है? जब मौत सामने दिखती तब नशा उतरता है, और वो श्री कृष्ण है जो जाकर के द्वैपायन ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हुए क्षमा मांगता है कि नादानों की सजा पूरे द्वारिका को मत दो। नादानों की सजा पूरे द्वारिका को मत दो। लेकिन एक बार रिवेंज का नशा चढ़ जाए ना, प्रतिशोध की भावना एक बार जन्म जाए तो आदमी आंधा ही नहीं होता है, आग बबूला हो जाता है। और श्री कृष्ण का प्रणाम भी जिस द्वैपायन को पिघला नहीं सका है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण और बलदेव द्वैपायन ऋषि के चरणों में प्रार्थना करते रहे। और तब द्वैपायन ऋषि ने कहा था कि श्री कृष्ण तेरी क्षमा, तेरी भक्ति, तेरा विनय, उसके सामने मैं झुक गया हूं, लेकिन मैं मेरे संकल्प से नहीं हटूंगा, लेकिन तुम दोनों को जलने नहीं दूंगा, पूरे द्वारिका जलाऊंगा, लेकिन तुम्हारा एक कपड़ा भी नहीं जलेगा। वो श्री कृष्ण है। और जब द्वैपायन ऋषि से दुत्कारा गया, अस्वीकृत हुआ, उसके बाद भी जो हार नहीं मानता है, जो पराजय को कबूल नहीं करता है और समाधान का रास्ता खोजने के लिए तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के पास पहुंचता है, किसी इंद्र के पास नहीं गया, और तीर्थंकर परमात्मा से भी कृपा की मांग नहीं करी। तीर्थंकर परमात्मा से नहीं कहा कि आप कृपा बरसाओ कि द्वारिका मेरी बच जाए। जो केवल पुरुषार्थ की घोष करता है, पुरुषार्थ का शंकर नाद करता है, वो श्री कृष्ण। जो अरिष्ट नेमि से सारी जानकारी देकर के कहता है कि यहां तक पहुंच गया हूं, अब भी मैं द्वारिका को बचाना चाहता हूं, प्रभु द्वारिका को बचाने का उपाय बताइए। वो श्री कृष्ण है जो कभी भी हार स्वीकार नहीं करता, वो श्री कृष्ण है। क्या हिम्मत रामेश्वर शांत कर, क्या हिम्मत, क्या हौसला, क्या कलेजा। और वो तीर्थंकर परमात्मा से उपाय मांग रहा है कि जिस तीर्थंकर परमात्मा ने घोषणा करी है कि द्वारिका का विनाश होगा, उसी भविष्य वक्ता से समाधान मांगना कि इसका विनाश नहीं हो, इसका उपाय दो। अरे कहां भटकते हो दर दर, जो तुम्हारी कदर नहीं करते वहां। और वो तीर्थंकर के तरफ देखो, कौन किसको कहते तीर्थंकर? अपनी भविष्यवाणी को झूठा करने का उपाय बता दें। जिन्होंने घोषणा करके द्वारिका का विनाश होगा, और उन्हीं से उपाय पूछता है श्री कृष्ण। क्या हिम्मत है, क्या कलेजा है, क्या श्रद्धा है, क्या भक्ति है, वो श्री कृष्ण। और अरिष्ट नेमि कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारिका में अहिमिल व्रत की आराधना शुरू करा दे।
जब तक अहम बिल चलेगा द्वारिका का विनाश नहीं होगा। हेलो, किसका विधान का? अहम बिल का। ना तो पूजा कही, ना पाठ कहा, तप मंगल है। श्रद्धा और संयम का, जिन शासन का, तप मंगल है। विघ्न विनाशक कोई है तो तप है। बिना तप के कभी भी विघ्न समाप्त नहीं होते हैं। और श्री कृष्ण वासुदेव ने द्वारिका में घोषणा करा दी कि द्वारिका की सुरक्षा के लिए अहम बिल करना है। मजबूत की मजबूरी देखो, मजबूत की मजबूरी देखो कि वो अहम बिल नहीं कर सकता है। और मेरा अंतर मन कह रहा है, यदि श्री कृष्ण को अहम बिल करने की अवसर मिलता तो द्वारिका का विनाश ही नहीं होता है। वो करा सकता है लेकिन कर नहीं सकता है। और नहीं करने की जिसको पीड़ा है कि मेरे बेटे दीक्षा ले रहे, मेरे पोते दीक्षा ले रहे, मेरी रानी दीक्षा ले रही और मैं संयम के मार्ग पर नहीं जा पाता हूं, इसकी पीड़ा जिसको है। और जिसने ऐसी त्रिधर्म की प्रभावना करी, जिसने ऐसी धर्म की प्रभावना करी, कर नहीं सकता था लेकिन इतना कराया, इतना कराया, इतना कराया, इतना कराया कि भविष्य में तीर्थंकर होने का पुण्य उपार्जन किया। वो श्री कृष्ण है। मैं ही नहीं तिर सकता हूं लेकिन मैं तिरा सकता हूं, ये सोच जिसकी है वो श्री कृष्ण है। मैं ही नहीं बाहर निकल सकता हूं लेकिन तुमको बाहर निकाल के रहूंगा, वो श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण की आज जन्माष्टमी है। तुम्हारे और मेरे हृदय के अंदर आज रात को श्री कृष्ण का जन्म हो जाए, श्री कृष्ण तत्व का जन्म हो जाए, श्री कृष्ण की श्रद्धा का जन्म हो जाए, श्री कृष्ण की सोच का जन्म हो जाए। और जब द्वारिका धू धू करके जल रही है और अपने मां बाप को रथ में बैठा करके द्वारिका से बाहर ले जाना चाहता है, घोड़े जुतने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे समय में आंख बंद कर करके उस दृश्य को आंखों के सामने लाओ कि द्वारिका नगरी के राजमार्ग पर अपने मां बाप के रथ के घोड़े बन करके श्री कृष्ण और बलराम मां बाप का रथ खींच रहे। वो श्री कृष्ण

ये श्री कृष्ण से तुम्हारी और मेरी मुलाकात हो जाए, जो आने वाले 24 में तीर्थंकर है उनसे तुम्हारी और मेरी मुलाकात हो जाए। इस तमन्ना के साथ या श्री कृष्ण से थोड़ी सी मुलाकात कराई, ज्योतिष श्रेष्ठ शनाका में जिनको हम वासुदेव कहते हैं, भाई भाई का प्यार क्या है, भाई भाई का प्यार क्या है, जब जरत कुमार का तीर लग करके श्री कृष्ण का आयुष्य पूर्ण हो जाता है, लेकिन भाई श्री कृष्ण की मौत को स्वीकार नहीं करता है, नहीं नहीं मैं पानी लाने के लिए गया था, ये रुट गया है, और कंधे पर उठा करके जो बलराम चलते रहता है, आज नींद खुलेगा कल नींद खुलेगी, इस मातृ भक्ति और बंधु भक्ति का नाम श्री कृष्ण है। और जरूरत आज है तो तीर्थंकर बनने वाले श्री कृष्ण की आवश्यकता है। युद्ध लड़ा नहीं, युद्ध लड़ा नहीं, युद्ध से सहमत नहीं थे, आखिरी दम तक प्रयास किया कि भाई भाई में लड़ाई नहीं हो, सरेंडर के लेवल तक समझौते में पहुंचे।

आखिरी दम तक प्रयास किया कि भाई भाई में लड़ाई नहीं हो, सरेंडर के लेवल तक समझौते में पहुंचे।

आखिरी दम तक प्रयास किया कि भाई भाई में लड़ाई नहीं हो, सरेंडर के लेवल तक समझौते में पहुंचे।